0: नमस्कार, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 PBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 बुधवार का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं और अभी एडलेड का टेम्परेचर बाहर 13 डिग्री है जो कि रात्रि में 10 डिग्री तक जाने वाला है। और आज तो बहुत बारिश हुई है और आज की बारिश की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन में ही जुलाई की हाफ एवरेज से ज़्यादा, जो जुलाई की एवरेज रेनफॉल होती है उसके आधे से ज़्यादा आज बारिश हो चुकी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज 40 mm के करीब बारिश हुई है। और जहाँ अगर आप एडलेड में कहीं डिफरेंट जगह जहाँ रहते हैं, आपकी रेजिडेंस है, ऑब्वियसली सब जगह काफ़ी रेन हुई है और माउंट लॉफ्टी वगैरह में तो और ज़्यादा रिकॉर्ड करी गई है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और आज का जो दोस्तों प्रोग्राम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरे पास AI साइबर फ्रॉड से लेकर कुछ जो खाने पीने के बारे में से लेकर और कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में आपसे मैं बात करूंगा और साथ ही साथ खूबसूरत गाने भी हैं। लेकिन अभी जो है वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म कर्मा के इस गाने के साथ।
1: या आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेर

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: दोस्तों बात करते हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर के बारे में. किसी भी हारी बीमारी में हम सबसे पहले डॉक्टर के भरोसे रहते हैं और उसके बाद भगवान याद आते हैं. तो दोस्तों इसीलिए बात करेंगे भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर के बारे में. हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और जैसे कि कहा कि किसी भी हारी बीमारी में हम सबसे पहले डॉक्टर के भरोसे ही रहते हैं और उसके बाद भगवान याद आते हैं. और हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर की इसी अहमियत को ध्यान में रखते हुए नेशनल डॉक्टर डे भारत में मनाया जाता है. पर आपने कभी ये सोचा है कि भारत की पहली डॉक्टर महिला कौन थी और वो डॉक्टर कैसे बनी? तो चलिए इसी बारे में मैं आपको इसी कहानी के बारे में बताता हूँ. तो दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी. एक पुरुष प्रधान देश में पहली महिला डॉक्टर होना उस समय बड़ी बात थी. 31 मार्च 1865 को पुणे के जमींदार परिवार में जन्मी डॉक्टर जोशी को शादी से पहले यमुना कहकर बुलाया करते थे. यह वो समय था जब शादी के बाद लड़कियों के सरनेम के साथ नाम तक बदल दिया जाया करते थे. फिर आनंदीबाई की शादी भी बहुत जल्दी हुई क्योंकि महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी 16 साल बड़े गोपाल राव से करवा दी गई. यह गोपाल राव की दूसरी शादी थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था. शादी जल्दी होने के कारण उन्होंने महज 14 साल की उम्र में नवजात शिशु को भी जन्म दे दिया पर 10 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई. और आनंदीबाई के 10 दिन के बच्चे की मौत ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए आगे का रास्ता दिखाया. उन्होंने इस बात पर गौर किया कि अगर उनके बच्चे को कोई बीमारी ना होती तो वह आज जिंदा होता. और इसी सोच ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया ताकि कोई भी बच्चा बीमारी से अपनी जान ना गंवाए. और सबसे बड़ी बात, भले ही परिवार और समाज ने आनंदीबाई को उनके इस काम के लिए खूब खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन उनके पति गोपाल राव ने उनका साथ नहीं छोड़ा. आनंदीबाई को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गहने तक बेचने पड़े थे पर उन्होंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी. और आनंदीबाई ने भारत से नहीं बल्कि पेंसिल्वेनिया के वुमेन मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल करी और इस तरह वो 19 साल की उम्र में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री पूरी करने वाली पहली महिला बनी. और ये भी बताऊं कि आनंदीबाई ने फिर भारत लौटकर कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक पद पर अपनी सेवाएं दी थी. तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बनी. अब दोस्तों मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमेन डॉक्टर के बारे में पता है? नहीं पता तो आपको बताता हूँ कि पहली ऑस्ट्रेलिया की वुमेन डॉक्टर जो थी वो लॉरा मार्गरेट हॉप थी. और उन्होंने जो है वो फर्स्ट वुमेन थी जो ग्रेजुएट इन मेडिसिन एंड सर्जरी, जिन्होंने यूनी एडलेड से ये पढ़ाई करी और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट वुमेन सर्जन भी थी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों इनकी ये जर्नी और इनसे प्रेरित होके जो है हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आगे रास्ता देख सकते हैं. चलिए अब सुनते हैं एक गाना.

0: seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मूड अब थोड़ा सा लाइट है क्वीन के इस गाने के बाद, तो थोड़ा लाइट ही रखते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के गानों के बारे में। दोस्तों आपने जैसे बॉलीवुड का हिट गाना है पल्लो लटके, जो कि वैसे है राजस्थानी लोकगीत, इसी के बारे में बात करते हैं। तो वैसे आपने ये गाना सुना तो ज़रूर होगा पल्लो लटके, लेकिन और ये गाना बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी फिल्माया गया और काफ़ी हिट भी हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाना असल में बॉलीवुड का नहीं है? दरअसल पल्लो लटके गाना एक राजस्थानी लोकगीत है और इस लोकगीत की धुन इतनी मज़ेदार है कि बॉलीवुड ने इस गाने का रीमिक्स बनाकर फिल्मों में इस्तेमाल किया और हर बार ये गाना उतना ही हिट हुआ। तो इसी बारे में बात करते हैं कि ये मशहूर राजस्थानी लोकगीत के हिट बॉलीवुड सॉन्ग बनने की क्या कहानी है। अब पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके राजस्थान के शेखावटी, मारवाड़ और ढूंढाड़ क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता आया है। इस गीत की रचना किसने की थी इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ये राजस्थान की लोक संस्कृति में ऐसा रच बस चुका है कि यह हर शादी ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। और देखा जाए तो ये लोकगीत राजस्थान की घूंघट प्रथा और वहाँ के पारंपरिक पहनावे से गहरा कनेक्शन रखता है। राजस्थानी महिलाओं के पहनावे में ओढ़नी का खास महत्व है। इस ओढ़नी के किनारे को पल्ला कहा जाता है। हवा के कारण महिला की ओढ़नी का पल्ला खिसक गया है और इसी नज़ारे को लोक कवियों ने इस लोकगीत में रचा है। पल्लो लटके गीत श्रृंगार और हास्य रंग का लोकगीत है। इस गीत में प्रेमी प्रेमिका मीठी नोकझोंक से एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। पारंपरिक रूप से इसे महिलाएं इस गीत को गाती हैं और नृत्य करती हैं। इस लोकगीत को कई अलग अलग लिरिक्स के साथ गाया गया है और इस लोकगीत की खासियत यही है कि इसका मूल ढांचा इतना बेहतरीन है कि इसके लिरिक्स में थोड़ी हेर फेर करने के बाद भी ये गाना किसी को भी अपनी धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर सकता है। और इस लोकगीत को बॉलीवुड में तो दोस्तों कई बार इस्तेमाल किया गया है। ईयर 1979 में आई फिल्म नौकर में जया बच्चन और संजीव कुमार पर यह गाना फिल्माया गया था। इस फिल्म में इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद साल 2017 में राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म शादी में ज़रूर आना भी इस गाने के रीमिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कि दर्शकों ने खूब इस्तेमाल किया। तो चलिए अब आप समझ तो गए होंगे कि हमारा अगला गाना जो है वो यही है। चलिए सुनते हैं पल्लो लटके।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों, मैंने बताया था कि आज जो है वो नेशनल डॉक्टर डे है. इंडिया में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई. तो इस नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पे न्यू दिल्ली में एक आयोजित इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में जाने माने डॉक्टर इंडिया के आए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ बुनियादी बदलाव कर लें तो कई गंभीर बीमारियों को आसानी से टाला जा सकता है. तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या आपका लाइफस्टाइल सही है. तो और जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही बात है कि डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा बचाव हमेशा इलाज से ज़्यादा असरदार होता है. अगर लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो कई बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है. वो डॉक्टर कहते हैं कि समय समय पर हेल्थ चेकअप, बैलेंस्ड डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और ज़रूरी वैक्सीनेशन, साफ सफाई और सही वक्त पर डॉक्टर की सलाह जैसे छोटी छोटी आदतों जो होती हैं वो बीमारियों के बोझ को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं. और डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ती उम्र में बिना किसी सहारे के चलना फिरना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई बच्चा कम उम्र से ही योग और फिजिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर देता है तो भविष्य में उसे हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं को टाल सकता है. और वो जोर देते हैं कि हेल्थ चेकअप को केवल एक औपचारिकता समझने की बजाय इसे स्वस्थ जीवन जीने का एक आजीवन नियम की तरह अपनाना चाहिए. और डॉक्टर कहते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है आजकल के वक्त में और ये कई गैर संचारी बीमारियों का मुख्य कारण है. उन्होंने कहा कि जैसे कि नियमित कसरत, एक्सरसाइज, योग, ध्यान और पर्याप्त आराम करना, रेस्ट करना और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर से भरपूर आहार लेकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं. और डॉक्टरों ने इस बात पर चिंता जताई कि बहुत कम भारतीय बीमार होने से पहले बचाव के तरीके अपनाते हैं. समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान देने से ना केवल बीमारियां दूर होती हैं बल्कि तेज़ी से बढ़ती उम्र के असर को भी धीमा किया जा सकता है. और इसमें डॉक्टर कहते हैं कि आज डॉक्टर सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि वे शिक्षक और मार्गदर्शक की तरह लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं. उनका मानना है कि एक स्वस्थ समाज में निर्माण केवल हॉस्पिटल्स और मेडिसिंस के भरोसे नहीं हो सकता. इसके लिए लोगों में जागरूकता, बेहतर उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको पता होना चाहिए. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये चीज़ें सब मिसिंग रहेंगी तो सिर्फ दवाइयां और अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वो इलाज नहीं कर सकते दोस्तों. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना रेगुलर चेकअप कराएं और साथ ही साथ योग और एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल में जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैलेंस्ड डाइट हो, फाइबर से भरपूर हो, वो सब खाएं. चलिए अब सुनते हैं ये गाना.

0: For setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co, a sponsor of this program.
1: आप सुन रहे हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। दोस्तों, परिवार में अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती है, जो बच्चा माता पिता की दिन रात फिक्र करता है उसकी बजाय उस भाई या बहन को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। जी हाँ, ये बात भले ही आपको कड़वी लगे और भेदभाव से भरी लगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये बिल्कुल सच है। तो क्या माता पिता जानबूझकर करते हैं बच्चों में फ़र्क? असल में माता पिता अपने होनहार और आत्मनिर्भर बच्चे को लेकर मन ही मन में इतना बेफिक्र होते हैं कि उनका ध्यान खुद ब खुद उस बच्चे की ओर चला जाता है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। और ये सब अनजाने में होता है। विज्ञान की भाषा में अगर इसे कहूं तो इसे बोलते हैं कंपनसेटरी पेरेंटिंग। और साल 2009 में जर्नल ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में छपी एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि करती है। और इस स्टडी के मुताबिक माता पिता जो संसाधनों का बंटवारा जानबूझकर पक्षपात करने के लिए नहीं करते, इसकी बजाय ये कमज़ोर बच्चे को बाकी बच्चों के बराबर लाने और भविष्य को संतुलित करने की एक रणनीति होती है। तो इसका होनहार बच्चे पे भी कोई क्या असर पड़ सकता है? भले ही माता पिता का इरादा गलत ना हो, लेकिन इसका बच्चों के मनोविज्ञान पर गहरा असर पड़ता है। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली की एक स्टडी के अनुसार, जब घर में किसी एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस रहता है, तो इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे कि भाई बहन के आपसी रिश्ते बिगड़ सकते हैं, माता पिता और उस बच्चे के बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर हो सकती है, और बड़ा होने पर बच्चे के सोचने और व्यवहार करने का तरीका बदल सकता है। तो इसे फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी से बहुत आसानी से वैसे इसे समझा जा सकता है। ये थ्योरी बताती है कि इंसान अपनी वैल्यू अकेले में तय नहीं करता, बल्कि आसपास के लोगों से तुलना करके करता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके भाई बहन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो उनकी पहचान और भावनात्मक विकास पर इसका गहरा असर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि कम तवज्जो पाने वाला बच्चा अपने अंदर एक गहरी नाराज़गी पाल लेता है, जो बड़े होने तक उसके मन में रह सकती है। हालांकि यह भी सच है कि एक ही घर में पले बड़े भाई बहन माता पिता के एक ही बर्ताव को बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। तो ज़रूरी है बच्चों से साफ साफ बात करना। कोई भी समझदार माता पिता कभी भी जानबूझकर अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, लेकिन अगर इस स्थिति को समय रहते ना संभाला जाए तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है और परिवार में उसकी जगह को लेकर उसकी सोच बदल सकती है। NIH द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज़ की इस स्टडी इसका एक सीधा और आसान समाधान बताती है, आपसी बातचीत। अगर माता पिता बच्चों को साफ साफ बता दें कि वह किसी एक बच्चे के साथ थोड़ा अलग व्यवहार क्यों करते हैं, तो बच्चे उस बात को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी अहमियत समझी जा रही है, तो उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं रहती और इससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गाना।

0: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659, or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: दोस्तों चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं घी के बारे में दोस्तों। जी हाँ, सदियों से घी न केवल वैदिक अनुष्ठानों का हिस्सा रहा है, बल्कि इसे भारतीय रसोई में भी प्रमुख स्थान मिलता रहा है। गायें हो, भैंस के दूध के अलावा बकरी, ऊंट और इवन घोड़ी के दूध से बने घी का भी प्रयोग आयुर्वेद चिकित्सा में किया जा सकता है। और जो दोस्तों सुश्रुत ने घी की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह स्वाद में मीठा, सौम्य, ठंडा और हल्का होता है। ये विकृत वात और पित्त को शांत करता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने इसे स्वादिष्ट और स्मृति, बुद्धिमता, चमक और सौम्यता के गुणों को बढ़ाने वाला बताया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में गाय के घी को शरीर में 7 प्रकार के उत्कों, पाचन तरल, रक्त, मांस, वसा, हड्डी, मज्जा और प्रजनन उत्कों का संवर्धक बताया गया है। और घी का स्वभाव दोस्तों वैसे लैक्सेटिव, पेट साफ करने वाला होता है और ये कई बीमारियों में लाभदायक साबित होता है, जैसे मिर्गी, पागलपन, केमिकल से होने वाली जहरीली प्रतिक्रिया, सिर दर्द जिसमें कि माइग्रेन रिलेटेड, और शरीर के बाहरी छिद्रों से जुड़ी बीमारियों के लिए। और घी का उपयोग ब्रह्म और आंतरिक दोनों ही औषधि के रूप में किया जा सकता है। शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथों में घृत चिकित्सा का उल्लेख है, जिसमें विभिन्न प्रकार के घी से उपचार किया जाता है। इसके लिए चुनिंदा जड़ी बूटियों को उबाले हुए काढ़े में शुद्ध घी में पकाया जाता है, ताकि वह दूसरी दवाओं के असरदार तत्व को सोख सके। अब दोस्तों घी को कितने समय तक रखा गया है, उसके आधार पर उसके गुणों में अंतर बताने वाले संदर्भ भी मिलते हैं। 1 वर्ष पुराने घृत को बाहरी उपयोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कुंभ घृत और महाघृत जो 11 से 100 वर्ष तक पुराने होते हैं, कुछ असाध्य बीमारियों में बेहद उपयोगी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। घी का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म के पहले तरण में किया जाता है और कमजोर रोगियों में इसकी मालिश अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और माइग्रेन जैसे पुरानी साइनसाइटिस और एलर्जी श्वसन समस्याओं में 10 से 15 दिनों तक नियमित रूप से नथनों में कुछ बूंद हल्का गुनगुना घी डालने से लाभ मिलता है। और दोस्तों घी को लेकर कुछ भ्रम भी हैं, और मानव शरीर पर घी के प्रभाव को लेकर आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दृष्टिकोण में काफ़ी भिन्नता है। पंचकर्म प्रक्रिया के दौरान घी के सेवन के बाद रोगियों को ट्राइग्लिसराइड स्तर में गिरावट की रिपोर्ट होती है, फिर भी आम जनता के मन में घी की सुरक्षित सेवन के बारे में बहुत भ्रम और भय व्याप्त है। हालांकि आयुर्वेद घी या किसी भी दूसरी चीज़ को सीमित मात्रा में लेने पर एक जोर देता है, लेकिन शरीर के अलग अलग सिस्टम पर घी के अच्छे और बुरे असर को पक्के तौर पर जाने के लिए दोनों सिस्टम की जानकारी की ज़रूरत होती है। तो जो है जैसे घी पर आधारित कुछ शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं, जो कि जैसे त्रिफला घी, शतावरी घी, इंदुकांत, अश्वगंधा, जो कि जिनके की अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिंस यूज़ करते हैं दोस्तों, तो घी अगर एक सही क्वांटिटी में लिया जाए, मतलब बहुत एक्सेस नहीं, तो इसके उतने नुकसान नहीं हैं जितने कि बताए जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं गाना।

दोस्तों अब बात करेंगे कुछ साइबर एआई क्रिमिनल्स के बारे में। तो मासूमों को ठगने के लिए साइबर क्रिमिनल्स रोज़ नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो अभी इसी कड़ी में एक नया स्कैम सामने आया दोस्तों। इस स्कैम में ठग पहले लोगों को आइडेंटिटी हड़प रहे हैं और फिर उसकी मदद से ठगी और फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। ये इंसिडेंट दोस्तों अभी रिसेंटली हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इस बारे में लोगों को सतर्क किया है, क्योंकि ये वहाँ पर हुआ है और ये काफ़ी हो रहा है, तो मतलब इसका स्प्रेड हो रहा है इंडिया में। और पुलिस के मुताबिक ठग भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मोबाइल से जुड़ी हेल्प मांगते हैं। वे खुद को टेक्नोलॉजी कम अवेयर दिखाते हैं और इस दौरान ठग का फोन पहले से ही वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मोड में होता है। जैसे ही व्यक्ति मदद के लिए फोन लेता है, कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा और आवाज रिकॉर्ड हो जाते हैं। और साइबर ठग इसका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए करते हैं। इसे फेस वॉइस क्लोनिंग स्कैम का नाम दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी इस स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी बारे में बात करते हैं। और दोस्तों ये फेस वॉइस क्लोनिंग स्कैम है क्या? ये एक नया एआई बेस्ड साइबर फ्रॉड है जिसमें ठग व्यक्ति के चेहरे और आवाज़ के छोटे से सैंपल को रिकॉर्ड करके उसकी डिजिटल कॉपी क्लोन बना लेते हैं। इसकी मदद से फेक आईडी बनाकर कॉल वीडियो या मैसेज के जरिए लोगों को फंसाते हैं। इसमें एआई बेस्ड बायोमेट्रिक स्कैम भी कहा जाता है। इसके लिए ठगों को बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ सेकंड का वीडियो या आवाज़ ही काफ़ी होती है। और अब बात करते हैं कि ये स्कैमर्स जो होते हैं फेस वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं। ये सबसे पहले टारगेट को चुनते हैं। स्कैमर्स भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, कहीं मार्केट में या कहीं स्टेशन पर, आपको ट्रेन स्टेशन पर या मॉल्स में मिल जाएंगे आपको। और ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो जल्दी में हो या मदद के लिए हमेशा तैयार दिखते हैं। और स्कैमर्स खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो अकेले बुजुर्ग हैं, शहर से अनजान हैं, टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं है। और वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे फ़ोन में ये वाला ऐप खोल दीजिए, वीडियो कॉल कैसे करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। और आप व्यक्ति को जेन्युइन समझकर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही मदद करते हैं जो उनका कैमरा होता है वो आपके चेहरे की एकदम साफ फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। और ये सिर्फ 5 से 15 सेकंड में हो जाता है दोस्तों। और रिकॉर्ड किए डेटा से स्कैमर्स जो होते हैं फेस क्लोनिंग करके आपके डीप फेक वीडियो बनाते हैं, वॉइस क्लोनिंग करके आपके डीप फेक ऑडियो बनाते हैं दोस्तों। तो अब जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी फोटो या वीडियो लगाते हैं तो क्या स्कैमर्स उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, पब्लिक प्रोफाइल पर डाली गई फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कैमर्स इन्हें डाउनलोड करके एआई की मदद से फेस और वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं। इसमें फर्जी कॉल वीडियो या आईडी बनाकर ठग कर सकते हैं। तो इस तरह के स्कैम में वो लोग ज़्यादा निशाने पर होते हैं जिनकी जानकारी आसानी से मिल जाती है या जो सतर्क नहीं रहते, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं। आजकल लोगों को है दोस्तों, कुछ भी घर में हुआ या कुछ भी, उसकी सारी वीडियोज़ और फ़ोटो और वीडियोज़ शेयर करने लग जाते हैं, और जिनका प्रोफाइल भी उनका पब्लिक हुआ, और जो लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं। तो एडवांस एआई टेक्निक की मदद से सिर्फ कुछ सेकंड की आवाज़ से भी वॉइस क्लोनिंग संभव है। एआई सिस्टम एक छोटे सैंपल से ही आवाज़ की टोन, पिच और स्टाइल कॉपी करके बिल्कुल वैसे ही आवाज़ तैयार कर सकता है। और फेस वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए स्कैमर्स जो होते हैं वो फर्जी आइडेंटिटी बनाकर कई तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपके दोस्तों से पैसे ले सकते हैं, परिवार से पैसे ठग सकते हैं, आपके ऑडियो या वीडियो की क्लोनिंग कर सकते हैं, ओटीपी बैंक डिटेल मांग सकते हैं, फर्जी अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी बड़ा क्राइम कर सकते हैं, आपके नाम से ठगी कर सकते हैं। तो
दोस्तों जितना हो सके जो है इसे अवॉइड कीजिए, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है, अगर आप इस चीज़ का शिकार हो जाएं, तो इस स्थिति में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाएं और इससे नुकसान कम होगा और आगे की धोखाधड़ी जो है वो रोकी जा सकेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं, और ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। दोस्तों चलिए अब जो है सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, इस अगले गाने के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब मुझे यानी कि अमित दुआ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।